0: Ja, sind sie gerade noch. X, das ist okay, das ist gut.
1: अगली बार आप आए ना जब लाहौर तो इनको भी हम गिटार देंगे साथ
0: ठीक
1: सितार ये सितार बजाता है
0: अच्छा अच्छा
1: और मास्टर है उसका प्रो है
0: ठीक है सर
1: ठीक है तो ये सितार बजाएगा
0: और सर इकट्ठे बजा के इकट्ठे
1: इकट्ठे
0: हाँ बिल्कुल सितार हो गए तबले हो गए
1: बस तबला मैं बजाऊंगा
0: हाँ वो कीबोर्ड हो गए सारे कुछ हो
1: ढोल बजाना